श्रोता जनो, ऑकलैंड श्री सत्य साई संस्था तरफ थी आप सबने अमारा जय साई राम। दर रविवारे सवारे 7 वाग्या थी 10 मिनिट सुधी आप गुजराती भाषा में साई वचनामृत सांभळी शकशो। याद रखशो, दर रविवारे सवारे 7 वागे 10 मिनिट सुधी साई बाबानी अमृतमय वाणी सांभळी कृतार्थ थवा प्रयत्न करशो। आ छे प्लेनेट FM 104.6।